0: भीमेश्वर मंदिर में दर्शन कर आने भक्त सन में हार्दिक अनुरोध
1: मेरो
2: विभिन्न धर्मावलम्बी साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

0: किसी भी कैच बैंक को गाड़ी चोनी हुई ने
1: पैंट और रुपये अलाउ ना दैट्स इट फकिंग होनी।
2: साथ ही भीमेश्वर नगरपालिका भित्र का शिक्षक को ड्रेस स्कूल कलेज का विद्यार्थी को ड्रेस पाइन का साथ ही अर्डर बमोजिम तैयार पार्न परे में मनोकामना टेलर्स समझन होस।
3: ग्रुप राइटर उमेश थापा थप जानकारी का संपर्क 9844065293 र 9844121119।

0: थिमेश्वर मंदिर में दर्शन कर आने भक्त सन हार्दिक अनुरोध
1: विभिन्न धर्मावलम्बी को साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।